रोगता चढ़दी कला बख्शनी अंग संसायो ना व्याधे पंजीवे सालगरे दे खुशियां बजाओ राजपाल सिंह रजनी कार जी पाटिया 1100 रुपए आदर कर दे दीर्घ आयु दे अरोगता बख्शनी सरदार हरमेर सिंह राजपूत लंगराली 1100 रुपए आदर कर दे देख देख पता रखनी सरदार बल

द्वितीया माल का सकाला पहे संग रागनी पांचौथा पहे गोंड करी अर देव गंधारी गंधारी सी हुती उचारी तनाश्री ए पांचौ गाई माल राग को सक संग लाई मारू मस्त अंग में वारा प्रबल चंड को सक उभारा खो खटवा पहरानद गाए अष्टमाल को सक

बसंती संदूर सुहाई सरस अहिरी लै पार जा संगलाई पांचो वार जा सुरमा नंद पास कर आए चंद्र बिम मंगलन सुहाए सरस बान अवाहे बिनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्ट पोत्र मैं

0: सगल द्वार को छाड़ के गह द्वार उद्वार बाहे गए के लाज सुगविंद दास वार दोहरा
1: राज करे का खालसा किरहन को ख्वार हो सुन ले बच्चे सुन जो दोरा और के सभा मरीज की करकुरा पासा।

डूबे नरक तहार मूड ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन कैसे ज्ञान को विचार ही ताप के सहते जो पैपाइए अतापनाद तापना अनेक तन कहल सहत है ताप ते किए ते जो पैन पायत अजाप दे फूदना सदीव तुही तुही।

देहु राम सीत सोई पूजा और निवाज योई मान सब एक पय अनेक को प्रमाओ है। देवताया देव जच गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन के पीस को प्रभाव है। एक नैन एक कान एक

न्यारे न्यारे होए के फिर आगम मिलाहेंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है, धूर के कनुका फिर धूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद ते तरंग को डूबजत है, पान के तरंग सब पान ही कहाहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए, ताही ते उपज सब ताही मैं समाहेंगे। केते कछ मच केते उनको करत पछ, केते अछ वछ हुए सब पछ उठ जाहेंगे। केते नव बीज अच पछ को करेंगे पछ, केतक प्रताच हुए पचाए खाए जाहेंगे। जल कहाँ थल कहाँ गगन के, गौन कहाँ काल के, बनाए सब काल ही चबाहेंगे। तेज जो अतेज मैं अतेज, जैसे तेज लीन ताही ते उपज सब ताही मैं समाहेंगे। कुकत फिरत केते रोवत मरत, केते जल मैं डुबत, केते आग मैं जरत है, केते गंग वासी, केते मदीना मक्का निवासी, केते

सर्व जलेर तलंग धन चरत इंद्र कुमेर पलंग अनखीत स्वरूप भेद भयंगन खंड भूत छेद छयंगन काल पाल दयाल स्वंग जय टटियंग मेर आकाश पुअंग अनखंड अमंड प्रचंड नरंग जय रचियंग देव अदेव बरंग सब कीनी दीन जमीन जमा जय रचियंग सर्व मकीन मका जय राग ना रूप ना रेख रोखंग जय ताप ना साप ना शोक सुखंग जय रोग ना शोक ना भोग भुयंग जय खेद ना भेद ना छेद छयंग जय जात न पात न मात पितंग जय रचियंग छत्री छत्र छितंग जय राग न रेख न रोग भणंग जय द्वैग न दाग न दो गणंग जय अंड ते ब्रह्मण रचियो दश्चार करी नव खंड सचियो रज तामस तेज तेज कियो अनुभव पदया प्रचंड लियो श्रिय सिंदर बिंद नगेंद नगंग श्रिय जच गंधर फणंद भुजंग रच देव अदेव अभेव नरंग नरपाल नरपाल कराल त्रगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंडज सीतज उत्भुजंग कई देव देव सराध पतंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रवजात न पात न ज्योत जुतंग जय तात न मात न प्रात सतंग जय रोग न सोग न भोग भुअंग जय चंपा किन्नर जच जुअंग नर नार नपुंसक जाय किए गण किन्नर जच भुजंग दिए गज बाज रतादिक पाद गणंग भव भूत भवेक भवान तवंग जय अंडज तीरज जय अंडज सीतज जीर रजंग रच भूमि आकाश पताल जलंग जय पा रज पावक पवन प्रचंड बली बन जास कियो फल फूल कली भू मेरे आकाश निवास छितंग रच रोज अकादश चंद्र ब्रतंग दूत चंद दिनी सह दीप दई जय पावक पवन प्रचंड मई जय खांडे खंड प्रचंड किए जय छत्र उपाय छपाए दिए जय लोक चतुर दश्चार रचे नर गंधर्व देव अदेव सचे अनतूत अभूत अछूत मतंग अनगाध अभ्याद अनाद गतंग अनखेद अभेद अछेद नरंग जहर चार चतुर दिश चक्र फिरंग जय राग ना रंग ना रेख रुगंग जय सोग ना भोग ना जोग जुगंग व भंजन गंजन याद सिरंग जय बंदत देव अदेव नरंग गण किन्नर जच भुजंग रचे मन मानक मोती लाल सुचे अनुभंज प्रभान गंज प्रदंग जय पारण पावत पूर मदंग अनखंड स्वरूप दंड प्रभा जय जंपत वेद पुराण सभा जय वेद कदेव अनंत कहा जय भूत

है न संग है न साथ है न दुख है न दाग है न द्वैख है न देह है न सिंह है न सियार है न राहु है न रंक है न मान है न मौत है न साक है न संक है न जच है न गंधर्व है न नर है न नार है न चोर है न साहु है न साहको कुमार है न नेह है न गेह है न देह को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है न राग है न रंग है न रेग है न रूप है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छाया को मिलाओ है न राग है न रंग है न रूप है न रेग है न कर्म है न धर्म है अजन्म है अपेक है न तात है न मात है अख्याल अखंड रूप है अक्षेद है अपेद है न रंग है न पूप है परे है पवित्र है पुनीत है पुराण है अगंज है अपंज है करीम है कुरान है अकाल है अपाल है ख्याल है अखंड है न रोग है न शोक है न भेद है न पंड है न अंग है न रंग है न संग है न साध है न प्रिया है पवित्र है पुनीत है प्रमाद है न सीत है न सोच है न क्राम है न काम है न लोभ है न मोह है न क्रोध है न काम है न देव है न दैत है न नर को स्वरूप है न छल है न छिद्र है न छिद्र।

है न बाल है सदीव ध्यान रूप है अगंज है अपंज है भरम है भूत है अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है भूता पिघ है बलिया रूप राग रंग है न द्वैग है न पिघ है न काम क्रोध कर्म है न जात है न पात है न चित्र चिन्ह वर्ण है बेअंत है अनंत तेज जानी है भूत अपिज है सदा चिज तेज मानी है न आद है न ब्याद है अगाध रूप लेखिया दुख है दाग है अच्छा प्रताप पेखिया न कर्म है न परम है न धर्म को प्रभाव है न जंत्र है न तंत्र है न मंत्र को रलाओ है न छल है न छिद्र को स्वरूप है।

गजाधपी नराधपी करंत सेव है सदा सितुष्पति तपस्पति बनस्पति जपसदा अगस्त याद जी बड़े तपस्पति बसेखिया बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ पेखिया अगाध याद देवगी अनाद पात मानिया न जात पात मंत्र मित्र सत्र स्नेह जानिया सदीव सर्व लोक के कृपाल ख्याल मैं रहा।

दामनी प्रहासन सोचा बनवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गुड़ गति रक्ता सुरियाचन युद्ध परमाचन निर्दय नराचन धर्म वृत्ति श्रोणंत अचिंती अनल बेवंती जोग जयंती खड़ग तरे जय जय हो सी मैं खा सुर मर्दन पाप विनाशन धर्म करे अगयोग निवारण दुष्ट प्रजारण सृष्टि उपारण शुद्ध मते फणी अर्पण कारण बाग बकारण सत्र प्रहारण साध मते साथी सनाहन अष्ट प्रवाहन बोल बान तेज तलंग जय जय हो सी मैं खा सुर मर्दन भूम आकाश पताल जलंग चाचर चमकारण चिचुर हारण धूम तुकारण त्रप मथे दाड़वी प्रदंते जोग जयंती मनुज मथंते गुड़ कथे करण करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूरज प्रति जन अष्ट पुजे जय जय हो सी मैं कासुर मर्दन परम विनाशन धर्म तुझे घुंगरू घमंकण सत्र जमंकण फणियर फुंकारण धर्म तुझे अष्टाट प्रहासन श्रेष्ट निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गति केसरी प्रवाहे शुद्ध स्नाहे अगमथा हे एक प्रति जय जय हो सी मैं का सुर मर्दन याद कुमार अगाध वृते सुर नर मुन बंधन दुष्ट निकंदन पृष्ठ विनाशन मृत मते कावरु कुमारे अधम उधारे नरक निवारे याद कथे किंकणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंगारोहण वितल तले जय जय हो सी सब ठौर निवासन बाय पताल आकाश अनले संकटी निवारण अधम उधारण तेज प्रकरखण तुंद तबे दुख दुख दहंती ज्वाल जयंती आद अनाद अगाध अछे शुद्धता समर्पण तर्क वितरकण तपत प्रतापन जपत जिवे जय जय हो सी शस्त्र प्रकरखण आद अनिल अगाध अभे चंचला चखंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तिच सरे करकसा कुठारे नर्ग निवारे अधम उधारे तूर पुजे दामनी दमंके गेहर लंके आद तंके क्रूर कथे जय जय हो सी रगता सुर खंडन सोम्भ चक्रत ने सोम्भ मथे बारज बिलोचन बृतन बिमोचन विसोच विसोचन कौच कसे दामनी प्रहासे सुख सरनासे सुबर सुपासे दुष्ट क्रसे चंचला प्रियंगी बेद प्रसंगी तेज तुरंगी खंड सुरंग जय जय हो सी मैं खासर मर्दन याद अनाद अगाध उर्दंग खंड का बिराजय रुण जुण बाजय ब्रह्म भाजय सुन सुरंग कोकल सुन लाजय किल विक भाजय सुख फराजय मधुरंग दुर्जन दल दजय मंदन रजय जबैन भजय रोहरण जय जय हो सी मैं खासर मर्दन चंड चकर तन आद गुरंग चाचरी प्रजोदन दुष्ट विरोधन रोध

तुम्र विधुंसन आद कथे रगतासुर मर्दन चंड चकरदन दान वर्दन बिड़ाल बधे सरधार विभरखण दुष्टन धरखण दुर्जन तरखण अतुल अमरखण धर्म तुझे तुम राज विधुंसन श्रोणत चुनसन सोमन पा

ऊच नीच कीनो बनाव सवार पार जा को प्रभाव सब जीव जंत जानत जाहे मन मूड क्यों ना सेवंत ताहे कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरज सेवंत कई पलट सूरज सिजदा कराहे प्रभु एक रूप द्वै कै लखाहे अन छिज तीजन भय प्रकार।

पंजनाथ जल तल प्रभाव सर्वत्र साथ। जय जात पात नहीं पीत परम, जय रंग रूप नहीं एक धर्म। जय शत्रु मित्र नहीं, जय शत्रु मित्र दो एक सार। अच्छा स्वरूप अबचल अपार, जानी ना जाए जय रूप रेख। कह बास्तास कह कौन पीख, कह नाम तास है कवन जात। जय शत्रु मित्र नहीं पुत्र प्रात, करुणा निधान कारण स्वरूप। जय चक्र चिन्ह नहीं रूप रंग रूप। जय खेत भेद नहीं कर्म काल, जब जीव जंत की करत पाल। और दंग बिरहत से दंग स्वरूप, दंग पाल जुदंग अनूप। जय रूप रेख नहीं रंग राग, छिज तेजन पिज अदाग। जल थल मही बंतन दुरंत, जय नेत नेत निस्दिन उचरंत। पायो न जाय जय पैर पार, दीनान दोग दहता उदार। कई कोट इंद्र जय पानहार, जय कोट कई कोट रुद्र जुगिया द्वार। कई वेद व्यास ब्रह्मा अनंत, जय नेत नेत निज दिन उचरंत। तो प्रसाद सवैये दीनन की प्रतपाल करन, संत बार गनी मन कार। पच पशु नग नाग नरादिप सर्व समय सबको प्रतपार। भोगत है जल मैं तल मैं पल मैं, कल के नहीं कर्म विचार। दीन दयाल दया नित दुखन, देखत है प्रदीत नहार। दाहत है दुख दुखन का, दल दुजन के पल मैं दल डारा। खंड खंड प्रचंड पारन, पूर्ण प्रेम की प्रीत समारा। पार न पाए सके पदमा पदवीत के देव भेद उचारा। रोजी राज बिलोक दराज गुरु, गुरुहान की रोजी ना टारा। कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत, भविक भवान बनाए देव देव। खपे अहंग मेव न पीव, लिखे ब्रह्म शिव ब्रह्माए। वेद पुराण के देव कुरान, हसीब थके कर हाथ न आए। पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना, पद सिंह श्री पदमा पद पाए। आद अनंत अगाध अद्वैक्स भूत, भविक भवान अप है। अंत बिना नात्मा बदाक दुख चित्रश है। लोगन के करता हरता, जल मैं थल मैं भरता ब्रह्मा है। दीन दयाल दया कर, श्री पद सुंदर श्री पदमा पद ए है। काम न क्रोध न लोभ न मोह, न रोग न सोग न भोग न पै है। देह बीन सने सबूतने, बृक्त अगे अच्छा है। जान को देत जान को देत, जमीन को देत जमान को दह है। काहे को डोलत है तुमरी, सुध सुंदर श्री पदमा पद लह है। रोगंते अर सोगंते, जल जोगंते बभात बचाव। शत्रु नेक चलावत गाव, तव तनेक न लागन पाव। रागत है अपनो करदा कर पाप, सबो न पेटन पाव। और की बात कहा कह तो साओ, सो पेट ही के पट बीज बचाव। जाच भजंग सदानव देव भेव, तुम्हें सभी करते आव। भूमिका तार सातल, जाच भजंग सब सिर न्याव। पाए सके नहीं पार प्रभाव को, नेते नेते वेद बतावे। खोज थके सभी खुजिया, सुर हार परे हर हाथ ना आवे। नारद से चतुरानन से रवनारिक से, सब मिल गायो। वेद के देव ना भेद लगे, सब हार परे हर हाथ ना आयो। पाए सके नहीं पार उमापत सिद्ध सनात सनंतन त्यायो। ध्यान तरु तय को मन मैं, जय को मितो सब जग छायो। वेद पुराण के देव पुराण, अभेद निर्पाण सब बजहारे। भेद न पाए सके उन भेद को, खेद दहन छेद पुकारे। राग ना रूप ना रेख ना रंग ना साग ना सोग ना संग तिहारे। आद ना दगा दबेगत भैग, जप्यो तिन ही कुल तारे। तीरथ गोट की ये स्नान दिए, बहुदान महाव्रत धारे। देश प्रयोग कर पेश तपोधन के, धरे न मिले हर प्यारे। आसन कोट करे अष्टांग धरे, पुण्यास करे मुख कारे। दीन दयाल अकाल भजे बिन, अंत को अंत के धाम से धारे। तो प्रसाद कबित अंतर के चलैया, चित छत्र के धरैया। छत्र धारियों के चलैया, महा चतरण के साल है। दान के दिवैया, महामान के बिठैया। वसान के दिवैया है कटैया, जम जाल है। युद्ध के जितैया, विरुद्ध के मिटैया। महाबुद्ध के दवैया, महामान हूं के मान है। ज्ञान हूं के ज्ञाता, महाबुद्ध दागे दादा। देव काल हूं के काल, महाकाल हूं के काल है। पूर्वी न पार पावे हिंगला, हिमालय ध्यावे गौर कर दे जी। गुण गावे तेरे नाम है, जोगी जोग साध पौन साधना। कतेक बात है अरब के, अरबी आराध तेरे नाम है। फरा के फिरंगी मान, कंधारी कुरेसी जान। पश्चिम के पश्चिमी पछाने, निज काम है। मरहटा मघेल तेरी मन से, तपस्या कर दृढ़ वै तिलंगी। पहचाना धर्म धाम है। बांग के बंगाली फिर हंग के, फिरंगा वाली दिल्ली के दिलवाली। तेरी आज्ञा मैं चलत है। रोह के रोहेले माघ, देश के मंगेल वीर। बंग सी बुंदेले पाप पुंज को मलत है। गोखा गुण गावे चीन मचीन के, शीश न्याव तिबती त्याय। दुख देख को दलत है, जिन्हें तुह त्यायो। तिना पूर्ण प्रताप पायो, सर्ब तन धाम फल फूल से फलत है। देव देव दान को, सुरेश दान मान को, महेश गंग धान को। अभेश कही अत है, रंग मैं रंगीन राग रूप मैं प्रवीण। और काहूं पैना दीन साध दीन कही अत है। पाई है न पार तेज पुंज मैं अपार, सर्व विद्या के उदार है अपार कही अत है। हाथी की पुकार पल पाछ पहुंचत ताहे, चीटी की चिंगार पहले ही सुनी अत है। केते इंद्र द्वार, केते ब्रह्मा मुख चार, केते कृष्णा अवतार, केते राम कही अत है। केते ससरासी, केते सूरज प्रकाशी, केते मुंडिया उदासी, जोग द्वार दही अत है।
ਕਿਤੇ ਮਹਾਦੀਨ ਕਿਤੇ ਵਿਆਸੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕਿਤੇ ਕੁਮਰ ਕੁਲੀਨ ਕਿਤੇ ਜੱਚ ਕਹੀ ਅਤਹ ਕਿਰ ਕਰਤੇ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਪੈਣਾ ਪੂਰਨ ਕੋ ਪਾਵੈ ਪਾਰ ਤਾਈ ਤੇ ਅਪਾਰ ਮੇਰਾ ਧਾਰ ਲਹੀ ਅਤਹ ਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ ਮੇਰਾ ਧਾਰ ਹੈ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਪਾਰ ਪੈ ਅਕਾ ਪਾਰ ਕੈ ਬਖਾਨੀਆ ਅਦਵੈ ਅਵਿਨਾਸੀ ਪਰਨ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਮਹਾਰੂਪ ਹੂੰ ਕੇ ਰਾਸੀ ਹੈ ਅਨਾਸੀ ਕਹਿ ਕੈ ਮਾਨੀਆ ਜੰਤਰ ਹੂੰ ਨਾ ਜਾਤ ਜਾ ਕੀ ਬਾਪ ਹੂੰ ਨਾ ਮਾਏ ਤਾ ਕੀ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਗੀ ਸੋ ਛਟਾ ਕੈ ਅਨਮਾਨੀਆ ਤੇਜ ਹੂੰ ਕੋ ਤੰਤਰ ਹੈ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਕੋ ਜੰਤਰ ਹੈ ਕੇ ਮੋਹਨੀ ਕੋ ਮੰਤਰ ਹੈ ਨਿਜੰਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਨੀਆ ਤੇਜ ਹੂੰ ਕੋ ਤਰ ਹੈ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਕੋ ਸਾਰ ਹੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਕੋ ਘਰ ਹੈ ਕੇ ਸਿੱਧਤਾ ਕੀ ਸਾਰ ਹੈ ਕਾਮਨਾ ਕੀ ਖਾਨ ਹੈ ਕੇ ਸਾਧਨਾ ਕੀ ਸਾਨ ਹੈ ਬ੍ਰਿਕਤਤਾ ਕੀ ਬਾਨ ਹੈ ਕੇ ਬੁੱਧ ਕੋ ਉਦਾਰ ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕੇ ਭੂਪਨ ਕੋ ਭੂਪ ਹੈ ਕੇ ਰੂਪ ਹੂੰ ਕੋ ਰੂਪ ਹੈ।

सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रुद्ध को अभूत है के अच्छे अविनाशी है काम को कुलिंदा है के खूबी को देहंदा है गनीमन गरिंदा है के तेज को प्रकाशी है काल हूं के काल है के सतरण के साल है के मित्रण को पोगत है के वृद्धता के पासी है जोग हूं को जंत्र है के तेज हूं को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को पास है के बुद्ध हूं को कार है देवन को देव है निरंजन या पीव है अदेवन को देव है के शुद्धता को सर है जान को बचैया है मान को दिवैया है जम जाल को कटैया है के कामना को कार है तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है महिपन को मंड है के स्त्री है नर है विश्व को पर्ण है के अवता को हरण के सुख को कर्ण है के तेज को प्रकाश है पाइय न पार पारा वार हूं को पार जागो की जत विचार तो विचार को निवास है हिंगला हिमा लगावे हबसी हलबी त्याव पूर्वी न पार पावा या सत्य नाश है देवन को देव महादेव हूं के देव है निरंजन पिवनाथ अद्वैनाशी है पू अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है के सेवक अधीन है कटैया जम जाल के देवन के देव महादेव हूं के देवनाथ भूम के भुजैया है मोहैया महाबाल के राजन के राजा महासाज हूं के साजा महाजोग को जोग है त्रैया द्रुम छाल के कामना के कार है के बुद्धता को हार है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के छीर कैसी छीरावत छाछ कैसी छतरा नेर छपा कर कैसी छप काल इंद्री के कूल के हंसनी सी सिया रूम हीरा सी हुसैनाबाद गंगा कैसी तहार चली सात सिंध रूल के पारा सी पलाऊगढ़ रूपा कैसी रामपुर सोरा सी सुरंगाबाद नीके रही झूल के चंपा सी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदागढ़ कीर्त तिहारी रही मालती सी फूल के फटक सी कैलाश कमाऊगढ़ काशीपुर सीसा सी सुरंगाबाद नीके सोही अत है हिमा सी हिमालय हार हार सी हलब्बा नेर हंस कैसी हाजीपुर देखे मोही अत है चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रागिर चांदनी सी चांदागढ़ चोन जोही अत है गंगा सम गंग धार बकान सी बलिंदाबाद कीरत तिहारी की उजियारी सोही अत है फरासी फिरंगी फरासी के तुरंगी मकरान की मृदंगी तेरे गीत गाई अत है बखरी गंधारी गोर गखरी प्रदेता चारी पौन के हारी तेरो नाम तिहाई अत है पूर्व पलाऊ काम रूप यो कमाऊ सर्व ठौर मैं विराजा जहां जहां जाई अत है पूर्ण प्रतापी चंद्रमा।

सखाई हर कीरत हमरी रहरा सुरहा हर जिनके वड भाग वडेरे जन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मलै तृपता सह मिल संगत गुण प्रगास जन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भाग हीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए ध्रग जीव ध्रग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन धुर मस्तक लिखिया लखास धन धन सत संगत।

तहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दायत जच्छन उपजायो आद अंत एक है अवतार सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तसही को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी सेवकण को शिव गुण सुख दियो सत्रण को पल मोह पद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत छींटी थे कुंचर यस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घड़ घड़ के पट पट की जाने जब उद करख करा कर तारा प्रजा धर तब देह अपारा जब आ करख करत हों कब हूँ तुम मैं मिलत दे धर सब हों जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे आप आपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्भकार निरलंभ आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव न पावत भेदा ताको कर पाहन अनमानत महामूड कश भेद ना जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह भिव आप आपनी बुध है जेती बरंत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा कह विद सजा प्रथम संसारा एक है रूप अनूप सरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जे रज से तज कीनी उत्वज खान बहर रच दीनी काहूं फूल राजा हुए बैठा काहूं सिमट भयो संकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आज जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो दुष्ट जिते उठवा तुत पाता सकल मलेच करो रण घाता जेस दुज तव शरणी परे तिनके दुष्ट दुख तुहे मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार धिए हैं ताके काल निकट नह है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्टन जाए निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध घर मो सब होई दुष्ट छा छै सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांस ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारद दुष्ट दोख ते रहा खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दैलहु उबारी सर्व ठौर मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते लेहो बचाई कृपा करी अंपर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किलबिक सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को छय करता श्री अजदुजा भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांशत फल पावे सोई दोख ना तसै पया

रहा हो जो या कि एक बार चौपाई को कह चौपाई सम सत्रह सहस भणी जय अर्ध सहस भन तीन कहे जय भादव सुधी अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्र पखयाने त्रिया चरित्र मंत्री भूप संबादे चार सौ पांच चरित्र समापत।

हमरे सब काज, तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब नवाजा। दास जान कर कृपा करो, मोय हार परा मैं आन द्वार तोहे, अपना जान करो।

धरा जग आए। अब मैं कथा संक्षेप ते सब हूँ कहत सुना कब बाच दोहरा। ठाड भयो मैं जोर कर बचन कहा सर न्याय। पंथ चले तब जगत में जब तुम करो सुहाय दोहरा। जे जे तुमरे ध्यान को नित उठ ध्याय हैं संत। अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत दोहरा। तिन बिधियन की कुल बिखै प्रगटे नानक राय। सब सिखण को सुख दय जह तह भय सहाय दोहरा। ठीकर फोर दलीस सिर प्रापुर किया प्यान। तेग

अब रीज के देहो वह हमको जहां विनती कर जोर करो। जब आओ कि आओ निदान बने अत हीरन मैं तब जूझ मरो दोहरा। दसम कथा भागवत की भाखा करीब नाय अवर वासना नाहि प्रभ धर्म युद्ध के चाय सवैया।

तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुम री कर मना कहो सब तोहे बखान्यो।

थाल विच तिन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सुधारो जे को खावे जे को भुंचे तिसका होए उधारो एह वस्त तजी न

सत्संग जी फतेह प्रवान करना जी उचारो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक बार फिर कृपा करो जी बुलंदबाजी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैनू बहुत सारे शब्द पढ़न वास्ते हुक्म होया। एक तो हुणे आनंदपुर साहब तो फोन आया कि परिवार बैठा है तो बच्चा जिहड़ा पिछले साल नाराज होया सी कि तुसीं मेरा शब्द नहीं पढ़िया। मनी पाजी वो वेख भी रहे ने ते मैं कहिंदे बेटा दस्तार सजा के आया तो बैठा है उहदा शब्द जरूर पढ़ दे ते बैठा है नाल। मैनूं हुक्म होया सी कि पिछले साल जाप साहिब जी विचों कीर्तन कीता सी ते उस्ताद जी ने भी हुक्म कीता है कि वह जरूर पढ़ना है ते शब्द सारे आप जी ने बेंत दफा सरवण किए हुए ने ते मेरी बेनती है कि सारी संगत नाल कीर्तन करिए हाजरी लवाइए। सब आखो जी।

mid. मेरी बेनती है सारी संगत अगला शब्द पढ़ने तो पहला मेरी बेनती है सब आखो जी।

हाँ जी, मैनू हुक्म होया गया कि शब्द पढ़ना है जिनी मेंढा लाल रिझाया हों ते सागे मन दे कलगियां वाले ससुर बेक सारा यार नासरो अकुज नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह इस दी मंसूर गुरु गोबिंद सिंह जिदा कोई नहीं नासरो हुंदा जी बेसरो सामान जिदा कोई नहीं ओदा कौन है आखो ना जिदा कोई नहीं ओदा कौन है ते फिर क्यों नहीं आखदे बुलंद आवाज़ नाल आखो।